वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु

आदि गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, सत गुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः, अष्टपदी।

गजर सह साध के संग बसे थान ऊचे साधु कै संग मैल पहुचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा

लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए अस्तपति ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमले अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व का सुख ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग का लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेक ज्यो बसदा को खो दै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक ज्यो पाव का सही सुपाओ

तनि श्लोक गुरु तारे जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानको अपरस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस।

मंदा गुर प्रसाद भिख्या पर हरे मन की वासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा परस बैसनो सो जिस उपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए पिन कर्म करत हो वै निह कर्म तिह बहनों का निर्मल धर्म काहु फल की इच्छा नहीं बाछे केवल भगत कीर्तन संग राते मन तन अंतर सिमरन गोपाल सभी उपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानक ओह बैसनो परम गत पावे भगवती ही भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिन सह सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म

बहुविधेयन प्रकार अष्टपदी कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पैतीर्थवासी कई कोट बन ब्रह्म उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार कई

आत्मने कोर, कई कोट पर दर्भ को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माह, कई कोट प्रदेश पर माह, जित जित लाभ तित तित लगना नान करते की जान, करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रास भोगी, कई कोट पंखी सिर पे उपाय, कई कोट पाथर वृक्ष ने बजाय, कई कोट पवन पानी बसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नानक जे

स्वप्न मनोवर्थ वृत्त है सब का दे नाम रंग सर्व सुख हो बड़ भागी किसे प्राप्त हो कर्ण करावण आपे आव सदा सदा नान कर जाव।

सगल काढ़ सो है। धनवंता हुए के आग गर बह जा, सब किस तिसका दिया धर बह। आत सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कहतावे। जे को हुए बहदा तार, तिस देन हार जाने गवार। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन, सदा आरोग ज्यो मंदिर को थामे थमण। त्यो गुर का शब्द बने अस्थमण, ज्यो पाखान नाभ चढ़ तरे प्राणी। गुर चरण लगत निह तरे, ज्यो अंधकार दीपक प्रगास। गुर दर्शन देख मन होए विगास, ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे। त्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे, तन संतन की बाछो तुहर नानक की। हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बेलाई, प्रभु लिखे का लिखिया पाई। दुख सुख प्रभ देव निहार, व्रत्याग तू तिसे चितार।

पाद में है, सो जानगत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समा समाणी, सत कर्म जाकी रजना, सत मूल सत सत उत्पात, सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बजाए, तिसे सब भली। सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास, सतनाम गुरते पाई, सत भजन साधु उपदेश, सत जन जा कर हृदय प्रवेश, सत ने

चरण कमल रिद में हर तारो करण कारण सुप्रभ सुमराथ द्रेव कर गह नाम हर वत एहो तन संचो हो भगवंत समझना काने बरमंत एकाश राख मन माहि सर्व रोग नानक मिट जाहि जेह धन कौ चार कुंट उठतावे सो धन हर सेवा ते पावे जेह सो कौनित बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत

नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण तो होए भगत जना कै मन तरंग बिरला को पावे संग एक बसद दीजे करमाया गुर प्रसाद नाम जप लाया ताकि उपमा कही न जाय नानक रहया सर्व समाय प्रभु बख्शान दीन दयाल भगत बछड़ सदा कृपाल

आवे मन हित। हम निर्गुणियार नीते अजान, नानक तुमरी सरन पुरख भगवान। सर्ब बैकुंठ मुक्त मोह पाए, एक निव करके गुण गाय अनक राग अनक राज। भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का

अनकाप ही प्रजावस्पति जब अकार्य हो कह न दृष्टे तब पाप पुण तब कहते होता जब तारिया अपन संभाव तब वैर विरोध के संक बाद जब इसका वर्ण तेह न जापत तब हरख सो कहो किसे बया।

आपन संग राज ताकी गात मित कही न जाए दूसर होए न सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नान के हो जान जो जान तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए वो तनवंत कुलवंत पदवंत जीवन मुक्त जहरदय भगवंत

सेवक की सेव आल जंजार बकार तरह ते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभी फेव हमारी प्रभु की उस्तत कर हो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज कुबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोधन दान सर्व इच्छा ता

हमारा नमस्कार सी को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रन को बल मोह बात कियो घट घट के अंदर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते गुंजर सूला सबर कृपा दुष्ट कर फूला

समण भयो संकरे कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव्याद जुगा स्वरूप से अम्भव अवृक्षा मेरी तुम करो असिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुद पाता सकल मलेश करो रणघाता जे आस तो जिताब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हावे मरे पुरख जमन भंग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब ठारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा वे ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट ठरे तत्काला कृपा दृष्टन जाय रे हर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब हो ये दुष्ट छा शबय सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन्नर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दोख दे रहा खड़केत मैं सरन तिहारी आभा दैले उबारी सर्व ठावर मोह सहाई दुष्ट दोखते लेहो बचाई कृपा करी हम बर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता केलवक सगल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शाय करता श्री अस्तुजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकला मन बांचत बल पावे सोई दुखना तसे बेआपत कोई अडल सुने गुंग जो जाहे सुरसना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भवन गिना दिनर गे रह और जो या की एक बार चौपाई को क्या है चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्थ सहस पुन तीन कह जाय भाद्र सुधी अष्टमी रवारा तीर्थ दर्व ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते गुआंग तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक राम आने हो सिमरत शास्त्र वेद सब है

छूटह भव जल जगत तरायण खोजत खोजत तत बिचार्यो दास गोविंद परायण अविनाशी खेम चाहे जे नानक

ओडिशाई भय दयाल कृपा करते साय कर कराइसे सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम बनाइसे हुकम न हो प्रमाण त कसम का मैल पाइसे कसम पावे सो करे मन तंदे सो फल पाइसे तादर के पैदा जाइसे तादर के।

और सबको के अपना दुश्मना ही सोचन कटी है किताब अपना पहले लिखा संडी है जा रहना नहीं ऐत जागत कायद गर्व हंडी है मंदा किसी राखे प्रखरे हो पूजिए मूर्ख नाल।

तद्वारी लेखा छोड़ लेखा छुट है हम निर्गुण लेहो युवारी साध बक्सिंद सदा मेहरबाना सब नांदी अधारी नानक दास संत पाचै परियो राख लिहो एह बारी नानक दास संत पाचै परियो

महाराज जी के चरणों की सेवा करके नाम जप के बंदा जो मंगता वह प्राप्त करता रहा, जो चाहता ओनू मिलता रहा, क्योंकि महाराज देव गुरु के चरणों के विच किहड़ा किसी चीज की किसी वस्तु की कमी है। इकला जो मंगता ओही नहीं मिलता। महाराज जी कहते जन्म मरण दोहों ते छुट्टा है, पावजल जगत तरायण, जम्मण मरण दोनों तो ही छुट जाता है, संसार सागर तो तर जाता है, ना ओदे लिए जम्मना रहिंदा है, नाम जपन वाले लिए मुड़के ना मरना रहिंदा है।

पूरण हारा। भगत तेरे सब प्राण प्रत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। तू अथाह अपार अत ऊचा, कोई अवर न तेरी पाता है। एह अरदास मारी स्वामी, बिसर नाही सुख दाते। दिन रैन सास सास गुण गावा, जी स्वामी तुद भावा। नाम तेरा सुख नानक मांगै, साहिब तुठे पावा। सुही महला पंजवा, विसरे नाही जित तू कबहू। सो थान तीरा किया, आठ पैर जित तुद त्याई। निर्मल होवे देहा, मेरे राम हो सो थान पालन आया। खोजत खोजत पया साध संग, तिन सरण आई पाया। रहाओ वेद पढ़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिरे बिललाते, ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवतूता। तिन भी अंत न पायो तीरा, लाए थके बेपूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर शांति मंगल गाया। सफल दर्शन पेट्यो गुरु नानक, तां मन तन हर हर त्याया। सुही महला पंजमा, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै। तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का। निमख सिमरत जित छूटै, संतो सागर पार उतरियै। जी को वचन कमावै संतन का, सो गुरु प्रसादी तरियै। रहाओ कोट तीर्थ मज्जन इस नाना, इस कल मैं मैल भरीजै। साध संग जो हर गुण गावै, सो निर्मल कर लीजै। वेद कतीब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस, उपदेश चौं बरना को सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरे, सो कल

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਗਈ ਸਵਾ ਮਲੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਕੂੜਾ ਪਸਾਰ ਡਾਂਕਾ ਵੱਜੇ ਫਤਿਹ ਕਾ ਨਿਲੰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਬਰਾਜੀ ਅਬ ਚੱਲ ਲਗਨ ਮਜ਼ਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੇ ਗਹਿ ਕੀ ਲਾਜ ਗੋਬਿੰਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਦੀਨ ਦਰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੋਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣਾ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਜਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਜਲ ਕਰਤੇ
हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंड, नीको ठाकर देसा। हम पापी तुम पाप खंड, नीको ठाकर देसा रहा। तुम सब साजे साज नवाज, जियो पिंड दे प्राणा। तुम सब साजे साज नवाज, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, तुम दान दियो मेहरवाना। निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, तुम दान दियो मेहरवाना। तुम करो भला हम भलो न जानो, तुम सदा सदा दयाला। तुम करो भला हम भलो न जानो, तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पुरख बदात, तुम राखो अपने बाला। तुम सुखदाई पुरख बदात, तुम राखो अपने बाला। तुम निदान अटल सुल्तान, ये जन सब जाचे। तुम निदान अटल सुल्तान, ये जन सब जाचे। कौ नानक हम हे हवाला, राख संतन के पाछे। कौ नानक हम हे हवाला, राख संतन के पाछे। चाचरी शन गोविंदे मुकंदे उदार अपार हरि करि नाम में अका। गोविंदे मुकंदे उदार अपार हरि अंकार नाम में अकाम। टाडी दर प्रमंगण दर कदे न छोड़े, टाडी दर प्रमंगण दर कदे न छोड़े। मन लत्ता गोबिंद संग सच भोजन जोड़, मन लत्ता गोबिंद संग भोजन जोड़। प्रीत लगी हर स्यों ए हस्ती कोट, प्रीत लगी हर नाम ए हस्ती कोट। राज मिल खुशियां कणी ट्याय मुख ना मोड़, राज मिल खुशियां कणी ट्याय मुख ना मोड़। ढाडी दर पर मंगना अंदर कदे न छोड़, ढाडी दर पर मंगना अंदर कदे न छोड़। धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा, तू ही निरंकार है, तू सदा सलामत निरंकार। तू ठाकुर उच भगवान नानक की प्राबे अपनी भगती लाए। धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा, तू ही निरंकार है, तू सदा सलामत निरंकार। तू ठाकुर उच भगवान नानक की प्राबे अपनी भगती लाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज, धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज। कोट कोट प्रणाम, पुलचक माफ, त्रिचरण कमला माफ। बहुत बहुत धनबाद। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे स्वादा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री।

कर कृपा प्रभु अपनी अपने दास रख लीजे निंदक निंदा कर्म पचे जमकाल गरसीए रहा संता एक ध्यापना दूसर को नाहे एक सुहगे बेंटी रविया सर्वदाय कथा प्रातन सुनी भगतन की बाणी सगल दौट खंड खंड किए जन लिए मानी सत बचन नानक है प्रगट समाहे प्रभु के सेवक शरण प्रभु तन को बौ नाहे बिलावल महला पंजवन बंधन काटे सो प्रभु जा के कल हाथ अवर कर्म नहीं छुटिए रखो हर हाथ तो शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छुट जाय संसार ते रखे गोपाल रह आशा परम विकार मोह एन मोह लवन्ना झूठ सुभक्ति मन बसी पर ब्रह्म न जानना परम ज्योत कुमार है जो तो रखे तो रहा प्रभु दम कुमारे कौन कार समर्थ प्रभु देहो अपना मोह नानक तरिये सात संग हर हर गुण गाह बिलावल महला पंजवा कवन कवन नहीं करते आह तुम रही प्रतीत महा मुनि मोहा नर की रीत मन खट हर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमद हर का पखर तो छुट तो ऊपर लद जप तप संजम तम खंड है जम कह दुख डंड सिमर नहीं जून दुख लज्जे पांड हर संग सहाही महामीर तैसो तेरा भेद बीदा पंचपट बारिया उपजो महाखेद नानक तिन संतर शरणागति जिन मन बस कीना तन तन सर्वसी अपना प्रभु जन को दीना ब

प्रभु मेरे का बड़ प्रताप। सिमरा सिमरा सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण पियो नानक दास हूं, ता कहीं उपर को नाही। बिलावल महला पंजमा, सदा सदा जपिए प्रभु नाम, जरा मरा कुछ दुख न व्यापै, अगह दरगा पूर्ण काम रहा। आप त्याग परिहे निर्धारणी, गुरते पाइये कहे नदान, जन्म मरण की बह कटिये फांसी, सच ही दरगाह का निशान। जो तम करा सोई फल मंदा, मानता छोटा सगल गुमान। ओ नानक ता की सुन नाही, जा कह की जा सगल जहान। बलावन महला पंजवन, मन तन अंतर प्रभु आही, आहार गुण गावत पर नित तिस रसना का मोल कुछ नाही। रहा कल समूह उदरै खन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना, आनंद छेती लिखिया बन जागाही। चरण प्रभु कै बहुत पाहे, भव सागर पर पुरोही। संत सेवक भगत हर ता के, नानक मन लगा है ताही। बिलावल महला पंजवन, तीरा देख तुमार हे रंगा, तुही स्वामी अंतर जामे, तुही बसै साध कै संगार। खैर मैं थापन माजे ठाकर, नीच कीट कह करे रजंगा, कबू न बिसरह यह मोरे तै, नानक दास ही दान मंगा। बिलावल महला पंजवन, अजत पूजा जोग गोपाल, मातन गर्भ रखो दयाल, कंठ लाए रखे अपने कोह, तैस ही कोह लगे न ताती बाल। दमोदर दयाल स्वामी सरबस, संत जना तन माल, नानक जाचक दर्श प्रभु।

से कीन रहे मंतन प्रभु के चरण गहे आपत जाहन परम पौ नाठा जन्म जन्म के कल विगत है निरपौ है भजो जगदीश है कर कृपा पूर्ण प्रभु दात है निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंचवा सुहली तय नारायण राख सुहली का हाथ कही न पहुंचे सुहली होए मुआना पाक रहा गाड़ गढ़ार खसम सिर कटिया खिन में हो गया है खाक मंदा चितबत चितबत पिंचिया जन रचिया तन दीना ताक पुत्र मीत तन कुछ ना रहो सो छूट गया सब भाई साख कौ नानक तिस प्रभु बलिहारी जन जन का कीनो पूर्ण बाक मुलावल महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेव आपे आप वरते स्वामी कार्य रास की आंगर देव रहा आदमत प्रभु अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप अपने सेव की आपे रखे प्रभ मेरे का बड़ प्रताप वार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर बस की न जन सकल है जंत चरण कमल नानक सरनाई राम

जन संग उठन बैठन जन कै संगा जन रच चज मुख माथे लगी ऐसा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा जा के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की तोर क्यों मंजन नानक जन जन्म कह रहे कलंगा बलावन महला पंजवा जो पाव है तो मोहे प्रतपालक हम पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहा मोह निर्गुण गुण नहीं को हे पहुँच न सकू तुम रही काल तुम रही गतम तुम ही जान लो जियो पिंड सब तुम रो माल अंतर जामी पुरख स्वामी अन बोलत ही जानो हाल तन मन शीतल होए हमारो नानक प्रभु जी नदर हाल बुलावल महला पंजवा राग सदा प्रभु अपने साथ तू हमरो प्रीत मन मोहन तुझ बिन जीवन सगल अगाथ रह रंग दे रहो रक्त खन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जल तगन में जन आप हदारे कर अपने दे रखे हाथ शीतल सुख पायो मंत्र हर सिमरत शर्म सगले लाथ नैदन दान नानक हर से बहाई अपर सियाण सगल एकाथ दिलावल महला पंजवा अपना कबो ना बसार और लाखो स्वामी प्रभ मेहरे पूर्ण प्रीतम गोविंद बचारो रहो प्रत पापन व्यर्थ प्रभ व्यर्थ तुमार हो हमरे दुख हृदय मत धार हो जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही हो मैं पर कृपा कर जार जालब होन मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बार हो जन नानक प्यास चरण कमल की पेख दर्शन स्वामी सुख सार बुलावल महला पंजमा आगे पासे कुछ लुपया गुर पूरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म पव की नी म्यार मन तन रब रहा हर प्रीतमा दुख दर्द सब ला मेट गया सांत सहज आनंद गुण गाये दूध दौड़ सब हुए गया गुण या गुण प्रभु कुछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर ले अतल बड़ाई जब तमनासी नानक हर की जे बुलावल महला पंजमा बैन पै पास तन कैसे करो रह प्रत उदारन रख स्वामी भरोसे रहा सिमर नहीं आप तो फिर तमत माधव देखिया उदारन रख स्वामी आप भरोसे रहा सिमर नहीं आप तो फिर तमत मावत देखिया रदा स्वाम जैसे उधर बहावत हंधक महावत पापक मावत बुढ़ जैसे सरन दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संग श्रमन जैसे केसव कले कलेस नास अंग खंडन नानक जीवत दर्शन सिंह राग बलावल महला पंजमा बोले करुणावान एक ओंकार सत प्रसाद आपे मेल लय जब ते सरन तुमार गाहि तब ते दोह गए रहन ताज मान गर चंत फुरानी साधा सरन पै जप जप नाम तुमारो प्रीतम तन ते रोग भय महामुग्ध अजान अज्ञानी रखे तार दहे को नानक गुर पूरा भेटो आपन जान रहे बुलावल महला पंजवा जीवो नाम सुनी जो परसन पहे गुर पूरे ता मेरी आस पुनी रहा वीर गए वादी मन तीरा मोह आनंद धुनी उपजो चौह मिलन प्रभु प्रीतम मोह रहना जाहे कनी अनक भागत अनक जन तार सिमर जनक मुनि उनलैटैक नर तन तन पाए हो प्रभु नानक अनक मुनि राग बलावल महला पंजमा कर तेरवा पड़ताल एक ओंकार सत प्रसाद मोहन नींद ना आवे खावे हर कार्ज संत अवरण अड़ीन अड़ियणी अड़ियणी अड़ियणी कब कर गावे री रहा शरण सुहागन चरण शीस तर लालन मोहे मलाव कब कर गावे री सुनो सहेली मिलन बात कहो सागर अह मटाब तो कर ही लालन पाव तब रस मंगल है गुण गाव नंद रूप ते आव नानक द्वारे आयो तो मह लालन पाए हो री मोहन रूप दिखावे आ मोह नींद सुहावे सा मेरी त्रिखाव जानी आ मैं सहज समानी मिठे बिरह कहानी मोहन लाल पायो री रहा दूजा बलावल महला पंजमा मोर अह जाहे दर्शन पावत है राजो नाथ ही सहाही संतना अब चरण कहे रहा
अभिमान अपना भाव हिचरनावे उद्योग आलम कंद कमल कमल जौन आन रास नहीं चाहे एक हर लह आन तह टुटिये बैख तह छुटिये मन हर रास घुटिये संग साधु उल्टिये आन नहीं नहीं रहे नानक प्रीत चरण चरण है राग बुलावल महला नौमा दोप दे एक ओंकार सुख प्रसाद दुख हरदा हर नाम पछानो अजह मलगन कह जय समृत मोहत पह जी जानो रह गज की त्रास मिटी खन हूं मैं जब श्री राम बखानो नारद कहत संत रू बारक भजन मह लबटानो आंचल हमारा पाए है पंद पायो जागत जहे हरान नानक कहत भगत रसक हर निकट पाहे तम मन बलावल महला नौवां हर कह नाम बिना दुख पाप हिंग भगत बिना संसार न चुक हिंग गुर है भेद बदावे रह कहाँ प्यो तीर्थ वर्थ किए राम सरण नहीं आवे जोग जग न फल तह मानो जो प्रभु जस बसरावे मान मोह दीन को पर हर गोविंद कह गुण गावे कह नानक कह व्यर्थ को प्राणी जीवन मुक्त कहावे बलावल महला नवम जम है भजन राम को नाही तैन हर भजन आकार तो रखो मन माही रह तीर्थ कर है भारत फन रख है नह मनुआ बस जाको नह फल धर्म त है तुम मन सच कह तुम है जाक जैसे पहन जल मैं रखो वे दह नहीं तह पानी तैसे ही तुम तह पहचान हो भक्त हीन जो प्राणी काल मैं बहुत नाम ते पापत गुरद भेद बताव है कौ नानक सोई नर गुरुआ जो प्रभ के गुण गावे बुलावलो अठपदिया महला पहला कर दस बन एक ओंकार सतगुर प्रसाद नेट बसै देखे सब कोई गुरमुख बिरला बूझे कोई बिन पह पाई भगत न होई शब्द रत है सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस असमान रहा ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई कथ कथ बात करें दुख होई कथ कहने तह रह न कोई बिन रस राते मोहत न होई ज्ञान त्यान सब गुरते होई सच्ची रहत सच्चा मन सोई मन मह कथनी है पर रहत न होई लाभों भूले था न कोई मन मन बद सरजाल घट घट व्याप रहा विखनाल जो आज सो दिसे काल कार्य सिद्ध हृदय समाल सो गया निजन शब्द लबलाई मन मुख होम है पातक बाई आपे करते है भगत गुराही गुरमुख आपे दे बड़े आई रैन आधार ही निर्मल जोत लाभ बिना झूठे कुशल कुशोत वेद पकार है भगत स्रोत सुन सुन मान है वेख जोत शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ गुरमुख शांत उत्तम करमंग मान मुख जूनी दुख सहमग बंधन टूटे एक नाम बसामग मन ने राम सुचि पत पूजा किस बेखा नहीं को दूजा लेह कहो पावे मन सोहे नानक कह अब नहीं कोय बुलावल महला पहला मन कह के हा मन सा मारह ए मन पुन पाप उचरे माया मद माते तृप्त न आवे तृप्त मुक्त मन सचा पावे तन तन कर तु सब हुंदे माना बिन नामे को संग न जाना रहा कीचे रस भोग खुशियां कर तन लोका तन पस में ढेरी

जागर आया बरोई आपे करता करे सोई नाम रते सदा सोई गुरमुख बिरला बुझे कोई हृदय जपनी जप गुरदासा हर कम गोचर परम परसोमी जन पग लाग त्याओ होए दासन दासा रहो।

राम अलका बारा पासा जायाप मार मिलाइए हमें ममता लो जालो शब्द मैल जगाइए दर जाए दर्जन करी बाणे तार तार नारिया हर नाम अमृत जा दे नान का और तारिया

जैसे हाल हर बिना जमीनी भैये सोत बिना कैसे मणि भरोये कुंडी बिना क्या घंट चढ़ाइये साधो बिन ऐसे अवगत जाइये जैसे मात बता बिन बाल नई बिंब बिना कैसे कबरे दोई।

बजरे बिन गाय अकेली, पानिया बिन मीन तलबे, ऐसे राम नमा फिर बबरो न मराओ, जैसे गाय का बासा सुटला, थन चौदा माकन कोटला, नाव दियो नारायण पाया, गौरमेंट असा लाख लगाया, जैसे बके इस पर नारी, ऐसे नामे प्रिय प्यारी, जैसे दावते इंद्र मलका मा, तैसे राम नामा बिन बापरो नामा।

माया जल का ही पानी कर बाध्या। सात के आसन वर्ग रहे कहते नामा तन जाने तुम सर नाई और रहे ऊंचा नहीं कहना मन।

0: जपत होय सुखिया।
1: करोरी बंधन पर
0: हर का नाम जपत निस्तरे।
1: हनक माया रंग तिख नाम बुझावे।
0: हर का नाम जपते आगावे।
1: हे मार्गे जात केला
0: ते हर नाम संग हो तो सहेला।
1: ऐसा नाम सदा ध्याई
2: गुरुमुख परम का जपाइए।

0: तेने लागी
1: कई कोट प्रभु को खोजन्ते
0: आत्मै पार ब्रह्म लहन्ते
1: कई कोट दर्शन प्रप्यास
0: तिन क्यों मिलियो प्रभु विनाश
1: कई कोट मांगे सत्संग
0: पार ब्रह्म तेन लागा रंग
1: को हुए आप सो प्रसन्न
0: नानक ते जन सदा तन तन
1: कई कोट खानी रखा।

0: सोई करे।
1: अन जानत बिख्या मै रचे,
0: जे जानते अपने आप बचे।
1: परमे भूला दे दिस्तावे,
0: चार कुंठ के आवे।
1: कृपा जिसे अपनी भक्त दे।

0: संग उतरे सुन सरवन
1: कर कृपा जिसे अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
1: रूप सत जा का सत स्थान
0: पुरख सत केवल प्रदान
1: तू सत सत जा की बाणी
0: सत पुरख सत माए समाणी
1: सत कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करनी निर्मल निर्मली
0: जिसे बजाए किसे संपली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुरु ते पाई।